0: ने अपनी इच्छा अनुसार ही होने दिता सी, जिवें कि तुसी बंदी छोड़ दी साखी तो जानते हो।
1: भाई जेठा
0: ते भाई पिराना दोबारा रोह विच आ गए।
2: जहांगीर सम्राट ने यह सोच भी किवें लिया कि वह गुरु जी नूं बंदी बना लवेगा।
3: असी यह गुरु दा अपमान बिल्कुल नहीं होन दे सकते, हुण बहुत हो गया।
2: साडे कोल इन्नी शक्ति है कि असी इस सम्राट नूं आप ही सजा दे सकते हाँ।
3: पर असी जानते हाँ कि गुरु साहिब साडी शक्ति नूं इस्तेमाल करन दी मनाही ही करनगे।
0: उस समय अमृतसर तो बाबा बुढ़ा जी गुरु जी दे माता जी पासों एक फरमान लेके आए।
4: अपनी शक्ति दे अधीन तुसीं जो भी कर सकते हो करो, अते मेरे पुत्तर नूं जल्दी तो जल्दी वापस अमृतसर पहुंचा दिओ।
3: जे माता जी कहंदे हन कि असीं अपनी शक्ति नाल कुछ भी कर सकते हाँ, ते
2: तां चलो असीं भी फिर शेर बन के दिखाउंदे हाँ। चलो मेरे नाल।
3: जे तुहानूं इह ठीक लगदा है ते मैं तैयार हाँ।
2: असीं उसका खात्मा कर देंगे। गुरु जी जल्द तो जल्द कैद विचों छुटने चाहिए हन।
0: भाई जेठे ने अपने नाल पिराने नूं लै लिया। दोनों ने भयानक शेर का रूप धारण कर लिया।
5: हुण ए है ना ओ गल जिस बारे मैं कह रहा हां।
0: अगे बादशाह दिल्ली विच एक विशाल किले विच रह रहा सी। सो उस रात वो शेर दे रूप विच तब्दील हो गए। वो दो भयानक शेर शाही सोन वाले कमरे विच दाखिल हो गए।
6: नहीं, मेरा अंत आ गया है।
0: बादशाह मदद लेकर कुरलाया, अते गुरु जी ने उसनू शेरा तो बचा लिया। अगले दिन उन्होंने फिर शेर का रूप धारण कर लिया अते बादशाह नू डराया।
6: ए शेर असली हन, पर मेरे पलंग दे हेठा किवें आ जांदे हन, अते फिर इकदम गायब भी किवें हो जांदे हन।
0: उस दे मंत्रियां ने बिल्कुल इस गल दा विश्वास ना कीता कि ए असली शेर सन। उन्हां नू लग्या कि ए बीमार है, तां उन्होंने बहुत वैदा हकीमां नू सदिया ताकि वो ठीक हो जाए, पर कोई मदद ना हुई।
1: तां भाई जेठा
0: वैद दा पेश बनाया अते आप जाके सम्राट नू मिले।
6: कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकिया, मेरे रोग नू कोई ना दस सकिया। देखते हां जे तुसी दस सको।
2: असल विच तुसी बीमार नहीं हो, मैं जानदा हां तुहाडे नाल की हो रहा है। रात वेले दो शेर आउंदे हन ते तुहाडे दोवें पासे आके बैठ जांदे हन।
6: तुहानू इस बारे कीवें पता लग्या?
2: मैं एक बहुत वड्डे गुरु दा शागिर्द हाँ, मैनू बहुत कुछ पता है। मैनू ए भी पता है जदों तुसी परेशानी विच हुंदे हो तां तुहानू गुरु हर गोबिंद साहिब बचा लेंदे हन, नहीं तां शेरा ने हुण तक तुहानू मार देना सी।
6: वाह, तुहानू ते सच दा पता है। मैं ऐसा की करा जो मेरी मौत ना आए?
2: तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब नू बहुत चिरदा अपने कैद विच रखिया है। जितना तुसी पहला तय कीता सी उस तो किते वद समा हो गया है। तुसी गुरु नू झूठ बोलिया है, तां करके ही शेर तुहाडी जान दे दुश्मन बने हुए हन। तुहानू उन्हां नू जल्द तो जल्द रिहा कर देना चाहिदा है। तुहानू गुरु पास जाके उन्हां अगे सीस निवा के मुआफी दी फरियाद करनी चाहीदी है। जेकर तुसी उन्हां नू अज ही रिहा ना कीता तां शेरा ने भी अज रात ही तुहाडा अंत कर देना है।
6: अज रात? नहीं नहीं, ओए ग्वालियर दे किले दे सिपाहियां नू कह दियो कि गुरु हरगोबिंद जी नू इसे वक्त रिहा कीता जाए।
1: भाई जेठा
0: जी दी ए तरकीब कम आई।
6: हे अल्लाह, मैं आस करता हां कि गुरु मैनू बख्श देंगे। मैं उन्हां दी कृपा लई कुछ भी करन नू तैयार हां।
0: भाई जेठा गुरु साहिब दे दर्शन करन दोबारा किले च चले गए।
7: गुरु जी साडे कोल एक खुशखबरी है।
0: पर गुरु जी जानदे सन कि की हो रहा है अते भाई जेठा तो कुछ निराश लग रहे सन।
7: गुरु जी की सब ठीक है?
0: गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हां नूं एक प्याला दिता ते हुकम कीता,
8: भाई जेठा
0: जा उठ, इस प्याले विच नदी तो पानी भर के लिया।
7: हां जी मेरे गुरु जी।
0: नदी कोई ज्यादा दूर नहीं सी, वो किले तो निकले, नदी दे लागे गए, प्याला भरिया, वापस आ गए ते गुरु साहिब नूं पेश कीता। पीण दी था गुरु साहिब ने उन्हूं कहा, हुण जाओ ते पानी दोबारा नदी विच पा दिओ। वो हैरान हो गए।
7: वापस मतलब? अच्छा जी, सत बचन मेरे गुरु।
0: उन्हें गुरु दा हुकम मन्या अते वापस नदी दे कंडे चले गए। सारा पानी प्याले विचो नदी विच पा दिता अते दोबारा अपने गुरु कोल चले गए। ते गुरु जी ने अगों पुछया, जदों तुसी प्याला पहला भरिया सी तां की तुहानू नदी दे आकार विच कोई फर्क लग्या सी? की नदी दा आकार घट गया सी?
7: नदी विच ते बहुत पानी है, नहीं मैनू ते कोई फर्क महसूस नहीं होया।
0: तां गुरु जी ने पुछया, जदों तुसी ओ प्याला दोबारा नदी विच पा दिता तां की तुहानू आकार विच वट्टी लगी?
7: प्याले दा ते नदी नाल कोई तोल ही नहीं, उस नाल कोई फर्क नहीं पिया।
0: गुरु साहिब जी ने दसिया, जो गुरु घर की शक्ति है वह सदा ही नदी वांग वगती रहती है। गुरु की नदी हमेशा ही भरी रहती है, ना वो घटाई जा सकती है ना वधाई जा सकती है। सब नूं यह सोझी आने लगी कि गुरु साहिब जी ने उन्हां नूं यह काम करन लई क्यों किया सी। यह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करन लई दिता गया एक उदाहरण सी। गुरु जी अगे सिक्ख्या देंदे रहे, तुहानूं अपने नेक कम्मां करके अते सेवा करके एक छोटे जिहे प्याले दी प्राप्ति हुई है, पर उस छोटे जिहे कमाई नाल तुसी ये सोचिया कि तुसी एक वड्डा कारा करोगे। तां गुरु साहिब ने सारिआं नूं याद करवाया कि उह अपने आप नूं रिहा कराउण लई बहुत सारे कोतक रचा सकदे सन। जो शक्ति तुहाडे कोल हुणे है गुरु घर तो ही प्राप्त हुई है। कि इस घर विच तुहाडे च इन्नी शक्ति नहीं है? अपने दिल नूं यह सवाल करो।
7: हाँ जी मेरे गुरु जी, मेरे कोल शेर विच तब्दील होने की शक्ति है ते मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं दिल्ली शहर नूं भी खत्म कर सकता हाँ। पर तुसी तुहाडे कोल मेरे नालों किते वद बेअंत शक्तियां हन अते तुसी इस सब दा कदे भी अंत कर सकते सी जिवें तुहानू पौंदा।
0: गुरु जी ने कहा, तुहानू सदा ही अपनी शक्ति दा इस्तेमाल करन लई हुकम लेना चाहिदा है अते असी तुहानू यह हुकम नहीं दिता है, तां करके हुण तुहानू गुरु घर दे हुकम तो बाहर जाण दा नतीजा भोगना पैणा है।
7: मैं समझ गया हाँ, मैं हर प्रकार दा नतीजा भोगण लई तैयार हाँ।
0: सारिआं नूं हुण गुरु साहिब जी दे संदेश दा एहसास हो गया।
7: मैं भी बस यह कहना चाहुंदा हाँ कि अजिहा करन लई मैनू हुकम होया सी। माता गंगा जी ने बाबा बुढ़ा जी राही यह हुक्म कल्या सी कि असी अपनी शक्ति नाल जो भी कर सकते हाँ वो करिए, जिस नाल आप जी जल्दी रिहा हो सको। बाबा जी ने साड़ी इस तरकीब की हिमायत की सी, फिर भी आप जी नू सब दा भला मालूम है अते मैं तुहाड़ी आग्या दा पूर्ण तौर ते पालन करांगा।
0: गुरु जी ने अकाल पुरख की आग्या नू मन्या ते आख्या, असी की कर सकते हाँ? असी माता जी अते बाबा जी दे वचन नहीं मोड़ सकते, तां तुहानू कोई सज़ा नहीं होवेगी, पर सानू एह जे काम नहीं करने चाहिए। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਚਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
7: ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।
0: ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
5: ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
5: ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੀ ਜਿੰਨੀ।
0: ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਬਸ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਤਦ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

0: बस एक औरत है। हा इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निघी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इस दे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू